0: का
1: खालसा,
0: खालसा।
1: वाहेगुरु
0: वाहेगुरु
1: जी
0: जी की
1: की
0: फतेह।
1: फतेह।
0: All right, thank you. And I will be back in September.

दर राग सा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सौदर तेरा कहा सो कर कहा चित बे सर्व समावे बजे तेरे नर नेक संका केते तेरे बाब नहारे केते तेरे राग प्रीसियो कहे केते तेरे गाव नहारे गावन तुन पावन पाणी बैसंतर कावे राजा धर्म द्वारे गावन तुन चित कपिलक जान लिख लिख धर्म बिचारे गावन तुन ईश्वर ब्रह्म देवी सोहन तेरे सरासरवारे गावन तुन इंद्र इंद्रासन बैठे देवत्या दर नाले गावन तुन सिद्ध समाधि गावन तुन साध बिचारे गावन तुन जाति साति संतोखी गावन तुन वीर करारे गावन तुन फड़न फड़न रखी सुर जुग जुग वेदा नाले गावन तुन महाने मन महान सुरग मच प्याले गावन तुन रत्न पाए तेरे अत्सत्य रत्नाले गावन तुन जोद महाबल सूरा गावन तुन खान चारे गावन तुन खन मल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे थारे सही तुन गावन जोथर बावन रते तेरे भगत रसाले और केते तुन गावन से मैं चितन आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सिरा सच साय साचा साची नाय है पी हो सी जाय न जासी रचना जिंद रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाय कर कर देके कीता अपना ज्योतिष दी वड़ियाए ज्योतिष बाबा सोई करसी फिर हुक्म न करना जाए सपत शाह सह पत साह नानक रहन रचाए आसा महला पहला सुन वडा आके सब कोय केवड वडा डीठा होय कीमत पाए न कहया जाय कहने वाले तेरे रहे समाए बड़े मेरे साहबा गहिर गंभीरा गुण गहिरा कोय न जाने तेरा खेता केवड़ चीरा रहा सब सुरते मेर सुरत कमाए सब कीमत मेर कीमत पाए ज्ञान ध्यान गुड़ गुरहाय कहन जाए तेरी तिल वड़ियाए साब सत साब तप साब छंग आया सीधा फुरका क्या वड़ियाया तुद बिन सिरे कने न पाया कर्म लै नहीं ठाक रहाया आखन वाला क्या बेचारा सिफती फड़े तेरे भंडारा जिस तू दैत सह क्या चारा नानक सच सवार नहारा आसा महला पेला आका जीवा विश्रमण जाओ आकनों का साचा न

ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर त पाया सहज सेती मन बजावा था।

संतोख विचारो अमृत नाम ताकर का पायो जिसका सबस अतारो जे को खावे जे को पूछे तिसका होय उतारो ए बस तजी ने जाए नित नित रख और तारो तम संसार चल नग थरिया सब नानक ब्रह्म पसारो श्लोक